रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम।
2: सारेगामा कारवा 2.0।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: bunch of Zeus.
1: Kona jo.
2: Zeus. Zeus.
3: दोस्तों हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम मिलकर दर्द कर रहे हैं हम। जी हाँ।

0: की धड़कन को और जोर से धड़काने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899904 इज द नंबर। 8899904 नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। सेगमेंट जिसका सबको इंतजार रहता है, जी हाँ ब्रदर, आज का वेदर।
1: रेडियो चिनार वेदर अपडेट।
0: बिल्कुल आज का मौसम वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा, और वही अगर हम आज के मौसम की बात करें, सो इट्स अ बिट इंटेंस फॉर टुडे, क्योंकि बारिश बरसने की आशंका है, तेज हवाओं की भी आशंका है। इस 22 डिग्री सेल्सियस फॉर टुडे, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 22 डिग्री होने वाला है। वही अगर हम बात करें तो दोपहर होते होते जो है बादल सूरज को घेरने की कोशिश तो करेंगे, साथ ही साथ बादल बरस भी सकते हैं। वैसे जिस हिसाब से मौसम है आज का, हमें चाहिए कि हम रेन कवर्स वगैरह बैग्स या गाड़ियों में साथ रखें, बिकॉज यू नेवर नो मौसम और ऊंट किस करवट जाकर बैठे।
1: रेडियो चिनार
0: मॉडरेट है अभी, यूवी इंडेक्स 61% है, ह्यूमिडिटी 5 किलोमीटर पर आवर अभी के लिए, विंड स्पीड विजिबिलिटी 14 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 40:32 पर, आज का सनसेट होगा 7:25 पर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, जी हाँ कंगना जो इशारे करे दिल को छू जाते हैं। हर दिल की धड़कन को धड़काना ना भूल, अपनी बात हम तक पहुंचाना ना भूले। 8899904 इज द नंबर। 8899904 आप DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, द हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, सिरे हक्ट मेरी जान धड़का दे रहा।

0: से ज्यूस कौन आया
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
3: दोस्तों रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। जी हाँ, कह

0: मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, वॉर्म स्माइल इज द यूनिवर्स।

0: जूस कौन है?
1: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार। जी हाँ, मैं हूँ आपका यार आरजे ज्यूस। अब चिनार यार, मेरे प्यार, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ये जो बातें हैं ये तभी रंग लाते हैं जब आप अपने जज्बाते जो हैं हम तक पहुंचाते हैं। अब जाते जाते आते जाते इतना रदीफ काफिया नहीं मिला सकता। पते की बात ये है कि हमें आपका प्यार चाहिए, और प्यार आप पहुंचाएंगे ये तो मैसेज करियो, फोन करियो, व्हाट्सएप करियो, या अपन मैसेज डीएम। अब क्या करना है आपने?

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो। सब मैं हूं आपके साथ ही जक्सिस। दर्शन हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं। दर्शन सर, बाहर रहता हूँ, यहाँ नॉर्थ कश्मीर में जॉब करता हूँ और मेरा जो जॉब है बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब भी वक्त मिलता है रेडियो चैनल सुनता हूँ, हर दिल की धड़कन को तो मैं भी धड़काता हूँ। साथ ही इन्होंने लिखा है, जब छुट्टी पर जयपुर जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, तो ऐप के थ्रू भी रेडियो चैनल कनेक्टेड रहता है मेरे साथ। देखिए, यही है वो सच्चा प्यार जो हमें और आपको जोड़े रखता है, और आप ही तो हैं जो धड़काते हैं और दिल की धड़कन। रेडियो चुनाव 90.4 FM। दर्शन, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 8899-04-904 इज द नंबर, 8899-04-904। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूं जॉक ज्यूस, यह है मजेदार शो, व्हाट्सएप ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। मेरी जान से डायरेक्ट तड़का था।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो 90.4 एफएम बॉलीवुड न्यूज, और बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं मौनी राय की। मौनी राय यह है जिन्होंने अपने हस्बैंड सूरज को किया अनफॉलो, और उसके बाद देर आर रूमर्स एवरीवेयर, रूमर्स अबाउट देर डाइवोर्स एंड रूमर्स अबाउट देर सेपरेशंस। जी हाँ, एक्ट्रेस दिशा पटानी ने भी इस सूरज को अनफॉलो किया है, और उनसे जो है जो भी रिलेटेड पोस्ट वगैरह थे वो भी बताया जाता है कि डिलीट कर दिए गए हैं। ये है कि दिशा पटानी का सीन तो अलग है, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये जो रूमर्स है वो सच है, बिकॉज इंस्टाग्राम से कोई किसी को थोड़े ही हटाता है। रेडियो 90.4 एफएम अपना विचार आचार बनाकर हम तक बताए, हम तक पहुंचाए। 8899-04904 इज द नंबर। मैं हूं जॉक्स, आप सुन रहे हैं मजेदार शो, सबसे रहो।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: night.
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

ये प्यार बेशुमार आए हाय हाय और क्या ही चाहिए। 91.4 रेडियो चनार ब्रागा सो चुका है शो चनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट क्योंकि बॉस ये है शो चनार।

Beats on repeat, show Chunar Beats. I've enjoyed carrying on your radio Chunar 90.4 FM. These are the musti mazak, fun, entertainment, entertainment, entertainment. Kila wade sari information aap tak pahunchti hai. Well, I'm super excited. Hamesha ki tarah ki mujhe to day sari party karni hai aur akele nahi hu balki meri puri vibe tribe dono mere saath hai. देख लें ये जो मौका है इस पे आप ही चौका मार सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा टाइम जिसमें मैं बहुत ही खुश होती हूँ. मुझे लगता है कि सच में वो बातें जो मेरी अधूरी रह गई है उनको पूरा करने का टाइम आ गया है. सुबह शाम से ही सोचती हूँ कि क्या क्या कल बोलना है शो पे बिकॉज आई एम सो आई कैन सी ऑब्सेस्ड विद माई वर्क. होना भी चाहिए. देखिए अब सुबह सुबह एक बेहतरीन थॉट कैसे आएगी जब हम ये सोचेंगे कि हमारा काम कितना मस्त है ना यार और ये काम और भी बेहतर बन जाएगा जब हम सही सोच रखेंगे. और मेरे लिए तो यही है कि आप आएंगे और मुझसे बातें करेंगे और कभी आपको ये लगेगा कि हमारी सुनता को मैं हूँ, मैं सुनती हूँ यहाँ पर, हर चीज़ सुनने के लिए रेडी हूँ मैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप मुझसे बातें करें, मैं आपसे बातें करूँ और ये सिलसिला यूँ चलता रहे. सो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए और ये जानने के लिए कि आपके क्या है हालात, जज्बात और क्या हालात. जी हाँ, आपको कुछ दूर लेके जा रही हूँ. बस 2 बजे तक ये जो सफ़र है ना काफ़ी खूबसूरत बनने जा रहा है और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी आएंगे. मैं आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपके साथ बिताने वाली. अब आपके लिए गेस करना ये बताए कि आखिर क्यों मुझे आधा घंटा और रुकना पड़ेगा. और साथ में वही कि जो प्रॉमिस होता है वो भी हमने बात है, यानी कि बैक टू बैक सॉन्ग. जी हाँ, बताएगा गुरी बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि बीट्स और रिपीट शो चुनार बीट्स हॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ये है देख के दर्द.

beats with Harshadeva only on Radio Channel 90.4 FM.

Jeremy. Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harshadeepa on Radio Chinar 90.4 FM.

0: इट्स ऑन रिपीट, यानी कि चलना और रिपीट ढेर सारी बात है, यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं, ट्राई करते हैं कि आपके लिए सबसे पहले आप सही अपडेट समझ ले कि क्या है, आखिर किन चीज़ों का हमें फॉलो करना पड़ता है और किन चीज़ों को अवॉइड। And we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. Both sides से traffic को low किया जा रहा है। आप आराम से जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं, जा सकते अपने destination तक पहुँच सकते हैं। और डिस्पाइट जो बारिशें पड़ रही थी मंडे नाइट से ट्यूजडे तक, तो उसकी वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आई है, कोई भी डिस्टर्बशन नहीं आया है। बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमने सीट बेल्ट का ख्याल रखना पड़ता है, हमने ड्राइविंग SOPs को फॉलो करना पड़ता है, हमने गलत जगह पर ओवरटेक करना नहीं नहीं बनता है बॉस, क्योंकि उससे हम हीरो नहीं जीरो बन जाते हैं। सो वो कहते हैं ना कि कूल बनने के चक्कर में फूल ना बनिए, अपना ख्याल रखिए, और पता हो कि सच में हम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक सही पॉजिटिव मैसेज दीजिए सोसाइटी में, पता हो हमें कि ट्रैफिक पुलिस की नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है।
1: ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां और नारा वो जट दे पीछे आ, पर तू मैनू बाली ही जाचदी।
0: देखिए गड्डी जैसी भी हो, बस गड्डी को चलाना और हमें पता हो कि गड्डी का ख्याल कैसे रखना है और आसपास लोगों का कैसे ख्याल रखना है। सो वी कॉशियस, बी केयरफुल, एंड व्हेन वी से वी केयर फॉर यू वी मीन इट।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Haci.
1: Diva.
0: Haber Online.
2: जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर दुमन बोजियो खबर विस्तार सांग कि आखिर क्या खबरें हैं और किन पे बात करने जा रहे हैं, क्या चला आज सोशल मीडिया पर। तो बात हो रही है अभी एक ऐसी मूवी की जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। एज ऑलवेज आई कैन टच माय टंग टू माय नोज। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनन्या पांडे की, क्योंकि जब बात आती है अनन्या की तो हर बार ही कुछ अलग अलग अलग होता है, हर बार ही कुछ अलग एक्सपेक्ट किया जाता है। और अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी नई मूवी जान मेरा दिल, बट जाननी है वो या नहीं वो तो मूवी के बाद ही पता चलेगा। आन मूवी जो है हिंदी रोमांटिक ड्रामा है, यानी कि फुल ऑन ड्रामा। और उसमें आप देखेंगे विवेक सोनी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शन। एंड लीड रोल में अनन्या पांडे है एज चांदनी एंड लक्ष्य एज आरव। एंड पता नहीं, वो कहते ना कि अलग सा वाइब देती है मूवी, बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेलर इंसान को समझ आता है कि बहुत प्यार भरी मूवी है। बट उससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग है मूवी के डायलॉग्स। अब वो ब्रेकिंग इसीलिए है क्योंकि तू सच में चांद है यार, नूर भी है, गुरूर भी है और दूर भी। आए आए, देखिए इन लाइन ही काफ़ी मतलब दिल को छू जाती है। और ऐसे ही है बिकॉज वी टॉक अबाउट यू ट्रूली आर लाइक माई मून माई फ्रेंड, बिकॉज फुल ऑफ लाइफ फुल ऑफ प्राइड एंड ऑलवेज फार अवे। बट देखिए, दूर है पर नूर तो है। एंड एक और डायलॉग है, दैट्स इज्जत प्यार से बड़ी होती है। दैट्स ट्रू, जिस रिलेशनशिप में इज्जत ना हो आई डोंट फील वो प्यार होता है, क्योंकि इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सो रेस्पेक्ट इज ग्रेटर देन लव। एक और है, ऐसा फ्यूचर जिसमें तुम ना हो नहीं चाहिए मुझे। अरे देखिए, ऐसा कोई है यार, लाइक आपकी लाइफ में भी है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो ये बात कहते हैं तो वो एकदम ही जज्बात बदल जाते हैं, हालात वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऐसा हो जाता है। क्योंकि इंसान को बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अपना हमें ऐसी बातें बोलता है। सो आई डोंट वॉन्ट अ फ्यूचर दैट डजेंट हैव यू इन इट। सो इट मेक्स एवरीबडी फील लाइक दैट वी आर स्टार, वी आर लाइक, हमें वो पूरा लगता है। एंड आई एम श्योर आपने भी मूवी का ट्रेलर देखा होगा, क्योंकि ये मूवी तो वही बिंदास ही लग रही है। लेकिन एक और डायलॉग है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ व्हेन लक्ष्य आस्क्ड इस मूवी में अनन्या को कि आप अनन्या आस्क्ड लक्ष्य की मैं कैसे लग रही हूँ, देन वो रिप्लाई करते कि आप मेरी लग रही हो। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीका किसी को बताने का कि आप मेरे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हो और आपके बगैर मुझे लगता है मेरा कोई भी गुजारा नहीं है। सो टेल मी, अगर आपने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर के बाद आपको क्या लग रहा है मूवी का, क्या है आने वाला, क्या है एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे बताइए। शो कैसा बन जाए 8999 0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो कैसा बन जाए, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे देख सकती हैं आप?
2: तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिल फरेब।

0: बीट्स और रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ढेर सारी बातें हो रही है एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम, जो कि मोदी जी ने भी बता दिया है कि वर्क फ्रॉम होम यानी कि आप घर से अब काम कर सकते हैं, ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. और ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए हैं, पर ये सच में फिर अप्लाई होता भी है या नहीं अब देखने वाली बात है. बट वही आज ही सोशल मीडिया पे खुशी जो है ना, आए हाय हाय, वो ना रुकने वाला नाम ही नहीं है. देखिए बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, सब बोलते भाई इससे बढ़िया खबर क्या ही हो सकती है. अब वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है अभी अगर हम देखें तो वर्क फ्रॉम होम क्या ही, लोग जो है अभी बहुत सारे घर से ही काम करते हैं. और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि घर से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि काफ़ी कंफर्ट भी है और आप घर से ही पूरा काम कर ले तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सो बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो सोशलाइज होना और सुबह जाना, तैयार होने, यानी कि हमारा माइंड जो रेडी होता है कि हम काम करेंगे, बॉडी एक ही जगह होती है तो हम बिल्कुल भी मोमेंट नहीं कर पाते हैं. इट्स फाइन कि हम घर से काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की चॉइस भी है कि वो ऑफिस जाए काम करे. अब ये ना बहुत सारे लोगों का कहना है कि पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग. अब आपको पता ही होगा कि आपकी चॉइस के मुताबिक आपके हिसाब से कौन से लोग सही कह रहे हैं. अभी मोदी जी का भी यही कहना है कि अभी शायद से आने वाले टाइम में हमें घर से काम करना पड़ेगा. आप इस न्यूज़ से कितने खुश हैं और आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या भी. और टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम 8899 0494 पर आप कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.
1: बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गल पे है.

देख लीजिए कि बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए है ना कि जो कहते हैं कि भैया जी वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बस बोर ही तो रहे हैं, होगा कब। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आपका क्या कहना है? 8999904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिन्ना और बीट्स का ऐसा बन जाएगा।

0: ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ ਚ ਨੂੰ
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Beats on repeat, show chunar beats, sab enjoy kar rahe hain on your radio chunar 90.4 FM. Dei sari baatein aap mere saath kar rahe hain, and we are talking about work from home, yani ki WFH is a vital today because it offers critical bit of it's like enhanced work-life balance or mass jo hum keh sakte hain ki massive destruction jo hai computer-related stress hota hai wo kam hamara hota hai, increase hoti hai overall productivity, and especially it empowers employees to customize their own schedule and have a daily expenses and unlock better physical and mental well-being. And I believe कि बहुत सारे लोग हैं जो इस ऑप्शन को चूज करते सो दैट दे विल बी मेंटली ओके, दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा होता है कहीं कहीं, अब ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो रहा है. अभी पीपल आर मोर वोकल अबाउट देयर राइट्स, दे आर मोर वोकल अबाउट देयर वर्क, कि जो काम किया है उसका जी बराबर हिसाब दिया जाएगा. सो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, बट स्टिल पीपल आर लाइक कि वर्क फ्रॉम होम से ना बहुत चीज़ें होती है. फिलहाल के लिए इतना है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, उस पीरियड बन जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी फोकस बढ़ जाता है, कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल सेविंग्स होती है क्योंकि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, फ्यूल बच जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच जाता है, वार्डरोब का जो ज़्यादा है कम हो जाता है, ईटिंग आउट्स वो चीज़ भी कम हो जाती है, इको फ्रेंडली बताया जाता है बहुत ज़्यादा है, एंड हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है, डाइट, एक्सरसाइज, रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस रहती है, एंड नो जियोग्राफिकल बैरियर्स, इंक्लूसिविटी. सो ओवरऑल वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फ़ायदे भी है, बट स्टिल सोशली हम थोड़ा सा वो वीक हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, वी शेयर बॉन्ड्स, वी शेयर इमोशंस, वी शेयर एक दूसरे का काम, एंड इट्स अबाउट दैट कि आप कौन सा चीज़, यानी कि हर एक चीज़ इसका एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है. सेम व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे फ़ायदे एक इंसान को आज के टाइम पे मिलते हैं, वो अगर हम देखें कि उस चीज़ से क्या होता है, हम एक ही जगह घर में बंद हो जाते हैं, यानी कि हम उस सूट

हाल में भी हम वी कैन डू वन थिंग दैट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं घर में, बट स्टिल वो चीज़ आ जाती है जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान को अच्छा फील हो ही जाता है। सोशली हम काफ़ी कमज़ोर बन जाते हैं अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और अगर हम ऑफिस जाते तो हमारा जो वर्क स्ट्रेस है, लोड है, वो बढ़ जाता है, ट्रैवल उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दोनों ही चीज़ें हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज, बट यू टेल मी आपको कौन सा वे पसंद है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, वर्क फ्रॉम होम या फिर आप ऑफिस जाना पसंद करते हैं। और वही है कि एम्प्लॉय तो होती है एक ही छुट्टी, और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी तो बस मौज ही मौज है भैया। अब देख लीजिए, वो लोग बोलेंगे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं कि जीने के चार दिन हैं, और बेकार दिन तो कोई नहीं होता है, हर दिन ही काम करते हैं, बट एम्प्लॉय जो ऑफिस जाते हैं हर दिन, उनके लिए वो एक दिन काफ़ी कीमती होता है, एंड दैट इज़ सैटरडे, कि भैया जी वीकेंड है, प्लान्स बनाना है, बट स्टिल काम काम है, और काम है तो सब कुछ सही हो जाता है। फिलहाल के लिए इन्जॉय कीजिए, आपके थाट्स क्या, 8999 04 904 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो टू नॉर्वीज का सब इन्जॉय।

0: मैं हूँ आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

जी हाँ, मज़ा तो है ज़िंदगी जब वर्क फ्रॉम होम हो, और सज़ा ये है कि जब आप एक ही जगह बैठते हैं, और सज़ा ये भी है कि जब आपको लगता है स्ट्रेस बढ़ गया है। सो दोनों ही अगर हम देखें, दोनों ही पहलुओं के हम देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट स्टिल इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू चूज़ फॉर योर सेल्फ, व्हाट यू वांट फॉर योर सेल्फ। सो डिसीजन आपका है, आपको जो भी खुश करता है, आप जिस चीज़ में भी खुशी आपको मिलती है वो चीज़ कीजिए। बस ये कि अपना स्ट्रेस ना बढ़ाए, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। बट फिलहाल के लिए चिनार बीट्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं, जहाँ पर आप अपनी फेवरेट ट्रैक सुनते हैं 8899049044, कॉल करते, टेक्स व्हाट्सअप करते और अपने फेवरेट ट्रैक्स अपने लव्ड वंस तक पहुँचाते। सो जल्दी से शो का समझ जाइए, शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है।

0: सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM पर। ईशा की रिक्वेस्ट आई है, इस ट्रैक के लिए आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही पे हूँ. शो म्यूजिक ऑन डिमांड तो खत्म हो रहा है, बट रेडियो गर्ल्स, इसको मैं पहले ही बोला था आपको गेस करने के लिए, क्या एक्स्ट्रा टाइम क्यों बिताना आपके साथ. सो रेडियो गर्ल्स स्टे ट्यून्ड, बी रेडी, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है. 2 बजे आपके साथ मैं और असरा जुड़ेंगे शो रेडियो गर्ल्स लेकर. एंजॉय कीजिए ये ट्रैक ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM. ये यार दिल की धड़कन.

0: मैं हूँ आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की तो हूँ, पर साथ में काफी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी। देखिए शो शुरू हो चुका है हंगामा 2:30 से लेकर 4 तक ऑन वेंसडेज एंड सैटरडेज, बिकॉज एक स्पेशल शो जिसे हम कहते हैं रेडियो गर्ल्स वो था, और अभी शुरू हो चुका है हंगामा, ड्रामा और बहुत कुछ। शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहां ड्रामा, इन्फॉर्मेशन और क्या बजेंगे उसके साथ साथ लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है और कहीं नहीं, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी। गाने का नाम है बॉडी रोल, नौरा फतेही एंड यो यो हनी सिंह कास्टर हैं, और इसके अलावा ये गाना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पुराना है एंड ऑलरेडी गैदर 2.6 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार, और कुछ ही ट्रैक्स के बाद और भी बातें करेंगे, क्योंकि वही तो करने आए हैं शो हंगामा में, ड्रामा के साथ बातें, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और क्या कुछ नहीं होता। स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन और अभी वक्त है कि हम बात करें क्या ट्रेंडिंग है, आखिरकार क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब है, लोग क्या रीपोस्ट कर रहे हैं. और आज का जो ट्रेंड है वो एक्चुअली आज के डेट से रिलेटेड है, यानी कि मई 13 और अगर हिंदी में बोले तो मई 13, सो इट राइम्स विद मई 13. सो एवरीबडी Every year, this day is all about कि कैसे आप किसी के हैं, और हर कोई वो ट्रैक निकाल के पोस्ट करना ट्रेंड हो जाता है अचानक से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैसे मैं हूँ तेरा. Honestly, I find this trend so beautiful. और कहीं ना कहीं how like everything can relate to everything. जब आपके पास वो creativity होती है. और आप भी बताइए आपका कौन है. मैं हूँ अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट का, और आज की अपडेट ये है। सबसे पहले तो अलॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि जो पहले ऐप था, ऑफिशियल ऐप फॉर रेलवे अपडेट्स, दैट इज UTS, वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ऐप था, बट वो अभी इन प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपडेटेड रहें, और जो अभी का ऑन गोइंग वर्किंग ऑफिशियल ऐप है, दैट इज़ द रेल वन, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक नहीं, दैट इज़ बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन, कटरा, वंदे भारत, जो कुछ भी कोई भी ट्रेन्स हैं कश्मीर रिलेटेड, कश्मीर लिंक्स हैं एक्चुअली, उनके बारे में ही नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, सर्च बिटवीन ट्रेन्स, कौन सी ट्रेन लाइव स्टेटस के द्वारा कहां पर है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ट्रेन नंबर होना चाहिए, या तो आपको अपना रूट यानी कि जो लाइक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपको वो मालूम होना चाहिए। यू विल गेट द ट्रेन्स, यू विल गेट द टाइमिंग्स, यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू रेलवे। इसके अलावा आज की बात करें तो आज के भी जो ट्रेन्स शेड्यूल्ड है, दे आर एज पर समर टाइम टेबल, और जो रिंग रोड फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन मार्च

फेसबुक इन बड़गाम दैट हैज़ बीन स्टेगनेंट फॉर सम डेज क्योंकि बारिशें हो रही हैं. सो कोई भी ट्रेन में कोई डिले नहीं है, कोई चेंज ऑफ टाइम नहीं है, इट इज़ एज पर द शेड्यूल. सो अगर आप कंसल्ट करेंगे अभी का जो समर टाइम टेबल है रेलवे का, जम्मू कश्मीर रेलवे लिंक का, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है. और एक और एडवाइस है कि एवरी टाइम यू आर ट्रेवलिंग थ्रू ट्रेन, 10-15 मिनट पहले ही अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर मौजूद रहें ताकि आपके शेड्यूल में कोई डिले ना आए. मैं हूँ असरा शो हंगामा और देखिए एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इंफॉर्मेशन भी जरूरी है और इंफॉर्मेशन हो गई, अब एंटरटेनमेंट की बारी. मैं हूँ असरा शो हंगामा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, मौसम अभी काफ़ी खूबसूरत है, बारिशें हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन बारिशों से इतने तंग आ जाते हैं ना समर्स में, बिकॉज दे वॉन्ट समर्स टू बी सो अर्ली। बट मई अप्रैल मई के महीने ही ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिशें भी होती हैं और धूप भी काफ़ी निकलती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, और ये सारी चीज़ें इतनी अनप्रडिक्टेबली हो रही होती हैं, तो समझ नहीं आता कि सुबह हम स्वेटर या वॉर्म कपड़े पहने या नहीं पहने। पर देखिए, ज़रूरी है कि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मौसम में जब आप गर्म सिचुएशन या वार्म एनवायरनमेंट में होते हैं, अचानक से यू गो इनटू लाइक कोल्ड रूम्स, लाइक एयर कंडीशन रूम हो या फैन चल रहे हो, तो उस चीज़ की वजह से एक्सपोजर हो जाता है एंड यू कैन फील डिजी या नॉशियस ऑल्सो। सो दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड मोर ओवर, शोहंगामा का हर दिन एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है जिसके बारे में बात करते हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं अटेंशन एडिक्शन के बारे में। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा अडिक्टेड होते हैं कि सब लोग मुझे देखने चाहिए, सब लोग मेरे बारे में बात करें, या अगर कोई बात कर रहा होता है लाइक दे हैव देयर ओन टॉक्स गोइंग ऑन। ये जो इंसान होता है जिसे अटेंशन की अडिक्शन होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अटेंशन एडिक्शन का इलाज जरूर है, देखिए इश्क का इलाज हो ना हो, पर हर चीज का इलाज है। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो चुनार 90.4 एफएम, और कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप ही शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमें बताइए कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी और इंसान के साथ या खुद के साथ। 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो चुनार।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, जैसे कि आज हम अटेंशन एडिक्शन की बात कर रहे हैं और ये क्या है, क्यों होता है, थोड़ा बहुत हमने इस बारे में बात की, पर इस देयर इज अ लॉट टू कम बिकॉज देयर आर सम रीजंस आल्सो कि किस वजह से एक्चुअली एक अडल्ट, अगर हम बात करें एक अडल्ट, वो अटेंशन एडिक्शन का शिकार क्यों होता है और उसके पीछे चाइल्डहुड भी होता है, उसके पीछे ये भी होता है कि वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है। बट देखिए, ये इन सब चीज़ों के बारे में तो बात होगी ही आज बराबर चार तक, बट एक बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ कि कोई ऐसा, वो हमारे साथ ऐसा कभी होता है कि हम कोई गाना याद कर रहे होते हैं कि अच्छा, एक स्पेसिफिक गाना आपकी मेमोरी में ज़रूर होता है, आपको याद होता है कि what that song, what that music makes you feel, but आपको वो गाना याद नहीं आ रहा होता। अब देखिए, contradiction है जरूर, but amazing fact जरूर है कि जब भी आप कोई वो गाना आपको याद होता है कि but आपको उसका गाना, गाने का नाम याद नहीं आता, lyrics याद नहीं आते, but you really want to listen to that song because that song is such a good vibe or something like that, but फिर जब आपको वो ट्रैक मिल जाता है आफ्टर सर्चिंग फॉर अ वॉइल, मे बी जितना भी टाइम लगे या कभी भी अचानक से इट हिट्स यू, दैट एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट गिव्स यू अ हिट ऑफ क्रेजी डोपामाइन। And I would share this also that I have been finding this track since day, like this is the day 3 of finding this track. And फिर मुझे समझ आया और याद आया कि ये भी fact हमारे brain के बारे में है कि whenever we find something that is lost, honestly, crazy dopamine. Enjoy कीजिए back to back रेडियो सुनार पे back to back tracks only on रेडियो सुनार। और देखिए, शो हंगामा चालू है और ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में बात होती है। आप भी जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा और आप भी बताइए कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा ट्रैक, कोई ऐसा गाना जो आपको रियली यू वॉन्ट टू लिसन बट यू डोंट रिमेंबर द

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा एंड यू आर लिस्निंग टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी हम बात कर रहे हैं अटेंशन अडिक्शन की, और क्या रीजंस है कि एक इंसान अटेंशन से अडिक्ट हो जाता है। और सबसे पहला रीजन यही है कि लोग की कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है। उसकी जो सेल्फ इस्टीम होती है, उसको जो खुद से प्यार, जिसे हम सेल्फ लव के नाम से जानते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिगार्ड हो या सेल्फ इस्टीम, वो कम होता है। और उसको उनको चाहिए होता है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें वैलिडेट करें। और वो भी दो तरीके का हो सकता है कि एक इंसान वो ब्रैग कर सकता है कि भाई मैं हूँ और कोई नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे अटेंशन दो। बट वो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं बोलते, बल्कि उनके हरकतें बोलती हैं, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें एग्जाजरेट करते हैं। अगर उन्हें कोई काम करना आता है तो वो एग्जाजरेट करते हैं कि भाई मुझे आता है, अब मेरी तारीफ करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देर आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपथी गेन करने के लिए और जस्ट टू बी पैलेटेबल, यानी कि जस्ट कि हम लोगों के बीच में फिट इन हो, उस चीज़ के लिए हर चीज़ से एग्री करते हैं। अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी ना करे, वो एग्री कर लेते हैं ताकि लोग उनसे बात करें, लोग उनको बोले कि हाँ आप तो अच्छे इंसान हो क्योंकि आप मेरे ओपिनियंस के साथ मैच होते हैं। तो ताकि ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप्स में उन्हें वो फिट इन किया जाए, वो हर चीज़ को हाँ कह देते हैं। और ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हम इन सब साइंस को अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर ऐसा कोई साइन तो नहीं है, हम ऐसे कोई सिम्टम शो तो नहीं कर रहे कि क्या मालूम कि हम सच में लोगों के साथ फिट इन होने के लिए हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, या लोगों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ये बोलते हैं अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे वो छोटी सी अच्छाई क्यों ना, उसे एग्जाजरेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप नहीं बल्कि बाकी लोग जो आपके आसपास हैं वो कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग, अटेंशन एडिक्शन के शिकार हैं, उसके लिए क्या करना है वो बताएंगे कुछ ही ट्रैक्स के बाद। और देखिए, कॉमन एक स्टीरियोटाइप होता है कि ये लोग जो अटेंशन सीकिंग की आदत होती है, अटेंशन एडिक्शन होती है, वो एक्चुअली आदत से मजबूर होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ हैबिट, दिस इज़ एक्चुअली अ रियली बैड हैबिट जिसके लिए आपको काम करना चाहिए अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए और अपना बिहेवियर बेटर करने के लिए। देखिए, हमें तो मंजूर है कि आप हमसे बात करें, अपने विचार शेयर कीजिए, क्योंकि विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है रेडियो चुनार, वो भी सही मेरे यार।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वापस आके ये बताऊंगी कि अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं हु आर वेरी प्रोन टू अटेंशन सीकिंग, जिन्हें अटेंशन कहते ना, मुझे अटेंशन चाहिए, तो वो उनके लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले यू हैव टू सेट योर बाउंड्री बहुत ज़्यादा क्लियर कि मेरा टाइम है, एनर्जी क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको वैलिडेट करें. बाउंड्रीज बनाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाएंगे तब तक अगला इंसान वो नहीं समझ पाएगा कि ये इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है. एंड मोर ओवर, अगर कोई दोस्त है जिसे अटेंशन सीकिंग का इशू है, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप कैसे सबसे पहले खुद के बारे में और जान सकते हैं. जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हमें सबसे पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम सब में वो क्वालिटीज़ हैं या हम सब में ऐसे ट्रेट्स हैं जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दर्शाते हैं. इसके अलावा अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर है कि वो थेरेपिस्ट काउंसलर के पास जाए, उनको बताए कि मुझे अटेंशन सीकिंग का इशू है, बिकॉज दिस इज़ जेन्युइनली एन इशू. बट बात यह है कि मैक्सिमम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं और मैक्सिमम लोग इस चीज़ को क्योर नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि या तो आप खुद को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं या तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं. तो बेटर है कि हम इस चीज़ का सल्यूशन एज सून एज पॉसिबल निकालें और अपनी खुद मदद करें. Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Chinar 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. और कुछ ही देर बची है, अभी शो खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

देखिए, सुनना तो पड़ेगा क्योंकि लास्ट बात है हमारी आज, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक होता है। कल मिलेंगे, पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। और इसके अलावा यही चीज़ है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। और जैसा कि आज का टॉपिक ही था अटेंशन एडिक्शन, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखिए और हो सके तो अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करें कि मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है और मेरे पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल वापस आऊंगी 2 बजे, क्योंकि 2 से 4 रेडियो चुनार पे होता है शो हंगामा, जहाँ विचार शेयर होते हैं और सही मेरे यार वाला रेडियो चुनार चलता है। मैं हूँ अस्ट्रा शो हंगामा। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की है।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के नाम।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन,
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: और बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: अरे नैना।

मिठे बहना अतरे नैना हाय हाय मिठे बहना हाय हाय मुझको बना दे बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,

0: हम थे वो थी और समारंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। अप!

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।